0: दोलखा। अन्य जानकारी को लागि सम्पर्क नम्बर 9851066165 9851066165।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

गोसक तथा गायक मोहन तमाङ डान्सर तथा मोडल विमला थामी मुख्य सहयोगी गडुल थामी कार्यक्रम संयोजक कुलमान थामी श्री सेपीचन्द्र भूमि संरक्षण समिति भीमेश्वर नगरपालिका नौ

गोसक तथा गायक मोहन तमाङ डान्सर तथा मोडल विमला थामी मुख्य सहयोगी गडुल थामी कार्यक्रम संयोजक कुलमान थामी श्री सेतीचन्द्र भूमि संरक्षण समिति भीमेश्वर नगरपालिका नौ सुर्खे

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: यो रेडियो सैलुंग को समय सूचक हो।
2: अहिले अपराह्नको 4 बजेको छ।

0: Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

मिकपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर द नारी ले प्रगति पथ को।

जपौहारी लाई कृष्ण जपौहारी लाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैं भरी लाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैं भरी लाई।